0: समझती हूँ, मुझे औरों की ओपिनियन के बारे में नहीं मालूम, लेकिन जहाँ तक मैं समझती हूँ जो ये लोग जो टॉपिक्स लेकर चूज कर रहे हैं, स्पेशली ग्रीन एंटरटेनमेंट, वो बहुत अच्छे टॉपिक लेकर आ रहे हैं और उसके ऊपर बहुत अच्छा जाहिर बात है, देखें कहीं ना कहीं किसी ना किसी को उस बात के बारे में पता चलता है, जिस राइटर को या डायरेक्टर को, तो उसके लिहाज से वो कहानी बनाते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा नमक मिर्च तो डालना ही पड़ता है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए. तो मुझे ये लगता है कि ड्रामे बहुत अच्छे बनाए जा रहे हैं. जाहिर बात है थोड़ा बहुत ओपननेस आनी शुरू हो गई है, वो तो जमाने के साथ साथ बना रहे हैं. पहले आप पहले के 25-30 साल वाले ड्रामे लेकर देखें और अब का ड्रामा लेकर देखें, आपको उसमें जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा.
1: जी अंसा जी.
2: जी ड्रामे वाकई बहुत अच्छे हो गए हैं, एंड स्पेशली बहुत सारे सोशल सब्जेक्ट्स जो पहले दे आर अवॉइड करते थे, जो कि बड़े क्रिटिकल होते थे, एंड दे आर अफ्रेड टू मेक अ ड्रामा ऑन इट, नाउ दे आर डूइंग इट, एंड सो मेनी थिंग्स जो हम खुद भी रियलाइज नहीं करते थे, एंड वी रियलाइज दैट के ओके यस दीज आर द प्रॉब्लम्स व्हाट वी एक वो जो कहते हैं ना नॉर्म हो जाता है, और उसको जब व्हेन यू सी यस यू कैन डील विद इट, इट्स रियली गिव यू अ करेज, यस यू हैव टू फाइट एंड यू हैव टू डील विद दोस थिंग्स, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्लस पॉइंट दैट इट्स गिव यू, इट्स अ फॉर मी इट्स अ प्लस पॉइंट, एंड आई लाइक ऑल दोस सोशल सब्जेक्ट. यस सास बहू के ड्रामे बहुत हो गए, इनफ,
1: यस
2: नाउ वी नीड टू हैव सम डिफरेंट सब्जेक्ट्स,
1: समथिंग डिफरेंट. व्हाट अबाउट यू सुनील भाई?
3: देखिए जी, पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में मैं ये कहूंगा कि मैंने अपनी लाइफ में तीन अदवार देखे हैं. एक था 70s और 80s का, फिर आप जो मैं डिवाइड करता हूँ 70s और 80s को, फिर उसके बाद कलर टीवी आने के बाद 80s 90s और 2010 तक एक और जमाना था, और उसमें 2010 के बाद से लेके अब तक, अब तो खैर पीक पे है. तो किसी को भी मैं दूसरे से कंपेयर करके ये नहीं कहूंगा कि उस वक्त अच्छे नहीं बनते थे या अभी नहीं है. स्टोरीज हमेशा से अपने टाइम वक्त के हिसाब से, जो 70s और 80s का जमाना था, जो उस वक्त के ड्रामे हैं, वो आज भी उसी तरह जो है एवरग्रीन है.
1: जी
3: आपको तो याद ही होगा जो ढोक सियाल होता था एक ड्रामा, शमा, और वो कौन सा ड्रामा था
4: अंकल उर्फी
3: का मैं अभी जिक्र कर रहा था. ये वो ड्रामे हैं जो कि हमारे बेहतरीन जो है ना ड्रामास में आज तक शुमार किया जाते हैं, और बहुत सारे लोग क्लासिकल ड्रामास देखना अभी भी पसंद करते हैं यूट्यूब में. मैंने भी वीक में एक दिन रखा होता है कि जिस दिन मैं सिर्फ क्लासिकल ब्लैक एंड व्हाइट जो है या कोई मूवी या कोई ड्रामा देखता
4: हूँ. नाइस.
3: और बेशुमार ड्रामे थे. फिर उसके बाद आजकल के जो ड्रामे हैं वो डेफिनेटली उनमें प्रोडक्शन क्वालिटी, एक्टिंग डेफिनेटली, अब एक्टिंग में जो एक्टिंग पहले भी बुरी नहीं थी, लेकिन एक्टिंग का जो मेयार इस वक्त देखने में आ रहा है
4: जी,
3: दैट इज अमेजिंग. आप जो है फेस एक्सप्रेशंस, क्योंकि पहले क्योंकि एनालॉग ड्रामास होते थे तो फेस एक्सप्रेशंस पे कोई तवज्जो नहीं दी जाती थी, चल जाता था.
4: जी
3: अब HD में जब तक आप एक्सप्रेशंस ना दें आजकल के कैमरास के सामने, और जो प्रोडक्शन क्वालिटी आ चुकी हुई है वो तो अमेजिंग है, बहुत अच्छी.
0: जैसे आप खुद भी अब बनाते हैं,
3: बनाते हैं बिल्कुल जी,
0: तो आपको खुद को भी एहसास है कि देखें कि जब आपकी जो कहते हैं ना कि आपकी आंखें आपका सब बोलता है, जब आप उस एक्सप्रेशन से बात करते हैं तो उसकी तो अलग ही बात हो जाती है.
3: मैं आज जो अभी लेटेस्ट एक जंजीरे है ड्रामा
4: जी,
3: मैं उसमें थोड़ा सा जिक्र कर दूं.
0: जी जी
3: ये लेटेस्ट ड्रामे का, उसके पहले ही एपिसोड में
4: जी
3: आई थिंक सज्जल अली का ये सेकंड सीन था उसमें, जहाँ पे वो ढाबे पे है. एक्चुअली वो ढाबा नहीं है, वो वेस्टर्न स्टाइल का उन्होंने कुछ वो बनाया हुआ है, कैफे बनाया हुआ है. मुझे खुशी होगी अगर आजकल वाकई ऐसे ढाबे हैं तो मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन बहुत अच्छा ढाबा लगा मुझे, कलरफुल. तो उसमें जो सज्जल अली जिस वक्त वो ऑर्डर ले रही है, What an amazing acting.
4: Yes.
3: आप कभी उसको मेरे अल्फाज के साथ सुनने के बाद उस सीन को दोबारा देखें कि वो जिस तरह अपने आइटम्स अपना मेन्यू अपने क्लाइंट को इंट्रोड्यूस करवा रही है, अमेजिंग.
0: Yeah.

0: मैं तो उसके एक्सप्रेशंस देख रहा था कि कैसे उसने जो है ना किस फीलिंग के साथ वो जो है एक ऑर्डिनरी लड़की का जो वो ढाबा रन कर रही है कैसे वो ऑर्डर ले रही है और क्या एक्सप्रेशंस दे रही है. दैट वाज ऑसम.
1: आपने आपने शायद अभी पहला देखा.
0: मैं एक्चुअली मैं अभी जैसे मैं शो से पहले आप लोगों से बात कर रहा था, मैंने अभी मैं एक टाइम में ज्यादा ड्रामे नहीं, कुछ मसरूफियत भी ऐसी है और कुछ बहुत ज्यादा मैं देख भी नहीं पाता और यूजुअली जब तक 5-10 किस्तें जमा ना हो जाएं तो मैं शुरू नहीं करता क्योंकि फिर मुझे वो कंटिन्यूएशन की आदत है कि बैठे हैं तो बस आज टाइम है तो 5-6 इकट्ठी देख लें. तो जी मैंने अभी जो लेटेस्ट है उनमें से सिर्फ 2 ड्रामे मैं अभी फॉलो कर रहा हूँ और वो भी मैंने अभी स्टार्ट किए हैं. कुछ पुराने ड्रामे मैं देख रहा हूँ आजकल जो कि काफी एडवांस फेस में है तो उनके बारे में भी हम डिस्कस कर सकते हैं. लेकिन
2: So let's start with our first. We can start with Sara Api.
1: Sara Api, देख रही हूँ मैं actually नहीं देख रही हूँ उसे क्योंकि मैं दूसरे ड्रामे मेरे जो लिस्ट पे हैं वो 6-7 ड्रामे हैं जो मैं देख रही हूँ. तो Sara Api तुमने देखा?
3: देखा
1: तो you talk about
3: it. Sara Api is like एक वो जो कहते हैं ना normal day to day life जिसमें हम like it's always like so many things we don't realize and so many plus and minus points like living in the family system kya problems hote hain and when you are separated then to kya hote hain aur kis tarah dusre log aapko manipulate karte hain and even jo aapke acche they are like aapke khair khwah hote hain unko bhi negative bana dete
1: hain
3: unko bhi jaise Sara Api ko jo nayi bahu aayi from the Amir family she create a negative character for her and everybody follow her and then she took the control and it's sad in the end because I think aaj uska last tha aaj uska last episode tha and
1: ये ड्रामा मेरी लिस्ट पे है एक्चुअली तो मेरा इरादा है देखने का लेकिन आई वाज अट्रैक्टेड लिटिल बिट मोर टुवर्ड्स
3: अदर ड्रामास
1: मैं ये अभी नहीं देखा जैसे कि सुहेल कह रहे हैं कि कुछ ऐसे जमा कर लेते हैं
3: ड्रामे में
1: तो वो मैं शायद अब जमा हो गया मेरा
3: हर ड्रामे में ये होता है कि भाई शुरू में तो आप एक इंट्रोडक्शन होता है एंड देन इतनी ज्यादा नेगेटिविटी दिखा देते हैं ना एक कोई बुरा है तो इतना बुरा है एक अच्छा है तो इतना अच्छा है तो वो जब ज्यादा ड्रैग होने लग जाता है सम टाइम यू लीव इन द मिडल बिकॉज़ यू डोंट वांट टू सी कि मैं डिप्रेस नहीं होना चाहती ये देखकर.
0: लेकिन देखिए आजकल के ड्रामों में नेगेटिविटी से ही तो वो पॉपुलर हो रहे हैं. आप जितने भी आजकल देखें क्योंकि आप बहुत ज्यादा सॉफ्ट वाले ड्रामे तो आजकल इतने कामयाब नहीं
3: लोग जो है दिल बुरा हो जाते
0: और मेरा ख्याल है कि जो जितनी भी पहली जो 8 या 10 किस्तें होती हैं किसी भी ड्रामे की आजकल उसमें तकरीबन स्टोरी वो जो है पीक पे ले जा चुकी होती है और उसके बाद स्टार्टिंग फ्रॉम एपिसोड 11 22-24 वो अगर आप स्किप भी कर दें स्किप कर नहीं सकते अगर आप इफ यू कैन
1: लेकिन आई एम नॉट वन ऑफ दोस
3: आई डू
0: मैं ये कहता हूँ कि उसमें यूजुअली बहुत ज्यादा वो स्टोरी को कवर नहीं करते हैं वो एक रेगुलर सी होती है मैं स्किप नहीं करता मैं चाहे दिल में गालियां देता रहूँ यार इसमें भी कुछ नहीं हुआ इसमें भी कुछ नहीं हुआ
3: कि मैं सोचती हूँ आई डोंट वांट टू
1: वॉच लेकिन मैं पता है मेरी शुरू से आदत है लाइक दिस इज मी कि मैं अगर कोई किताब भी पढ़ती हूँ या मैं कोई मूवी भी देखने जाती हूँ या मैं कोई ड्रामा भी देखती हूँ ना तो मैं बड़े ओपन माइंड से सब कुछ देखती हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि इसमें ऐसी भी चीजें होंगी जो पसंद नहीं की जाएंगी इसमें ऐसी भी चीजें होंगी जो बहुत पसंद की जाएंगी. तो जब भी मेरी दोस्तों के साथ या मेरी बेटी के साथ या किसी के साथ भी जब मैं जाती हूँ तो सब लोग सबसे पहले एज अ ह्यूमन नेचर नेगेटिव बात करते हैं और मैं उल्टा बात करती हूँ. मैं कहती हूँ मुझे इसकी ठीक है मुझे स्टोरी लाइन शायद ना पसंद आई हो लेकिन मुझे उसकी एक्टिंग मैं बस पूरी मूवी में उसकी एक्टिंग पे फिदा थी लाइक आई एम लाइक दैट कि मुझे ओपन माइंड से मैं देखती हूँ तो मुझे हर चीज अच्छी लगती है चाहे वो किताब हो मूवी हो ड्रामा
3: मैं तो चाहे

0: ओपन माइंड से देखूं चाहे क्लोज माइंड से मैं तो रोती भी हूं
1: हां मैं भी रोती हूं मैं तो बहुत रोती हूं मेरे लिए आंखों से यूं करते हुए मुझे
0: सम टाइम आई डोंट वांट टू सी
1: मैं इसको कुछ बोलूंगा नहीं इस वक्त ये बड़ी इमोशनल
2: तो यू नो इफ आई आस्क यू टू यू नो जो
0: उसमें जो सुहेल एज ए मैन
3: नहीं मैं रोता नहीं हूं मैं स्टोरी बता देता हूं हर ड्रामे की के बाद में अक्सर मेरी वाइफ जो है ना लड़ती है कि अपना मुंह बंद रखना मुझे नहीं बताओ क्या होने वाला तो और कहीं ना कहीं मुझे झलक मिलती है आई मीन लाइफ में इतनी स्टोरीज देख ली हैं इतनी ज्यादा जिंदगी में चीजें ऑब्जर्व कर ली हैं कि बहुत सारी चीजें हमें पहले ही पता होता है थोड़ा सा उसको प्ले का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है
2: जी,
3: लेकिन रिजल्ट हमें पता होता है कि क्या आने वाला
1: होता है
0: मैं भी अपने दिल को तसल्ली देती हूँ मुझे पता है इन द एंड सब ठीक हो जाएगा
3: और मैंने तो क्योंकि बहुत सारी फिल्में देख रखी हैं पाकिस्तान की इंडिया की पुरानी जो घरेलू स्टाइल की होती थी फिल्में और हर तरह की स्टोरी को इतना मैंने डीपली जो है ना वो फील किया हुआ है वॉच किया हुआ है
2: जी
3: कि मुझे तो अभी भी ऑनेस्टली देखा जाए तो कहीं ना कहीं आजकल के मॉडर्न ड्रामास में भी कहीं ना कहीं कोई मुझे लिंक मिल जाता है पुरानी स्टोरी से कि ये उन्होंने शायद वहां से इंस्पायर होके लिया ये वहां से लिया आजकल के पिछले बहुत सारे ड्रामे ऐसे हैं मुझे लगा है कि ये पुरानी फिल्मों से इंस्पायर होके उन्होंने नई स्टोरीज लिखी हैं
1: क्योंकि सब चीज स्टोरी चाहे फिल्म हो चाहे ड्रामा कुछ हो कहीं ना कहीं तो उनको उसका वो मिला ना
0: होता है
1: आपके आपने किसी की अपने दोस्त की किसी कहानी या किसी किसी किस्से को आपने इलैबोरेट कर दिया फिल्म में या ड्रामे में यू नो लाइक वी नो
0: कभी कभी एक दो डिफरेंट ओकेजंस को मिला के
2: तो यू नो इफ आई आस्क यू टू जो है अपना तो उसमें जैसी एक्टिंग है तो अगर उसको रेट देना हो तो क्या देंगे
1: कौन
2: दिस ड्रामा सारा आप ही में
1: सारा
2: योर बेस्ट
3: इन्होंने देखा है ये बताएंगे उसमें
0: सारा
1: जापी है
0: वो जो सवेरा नजर शी इज ऑलवेज शी इज आई मीन वेरी सीनियर एक्ट्रेस एंड शी हैव डन अ सच अ गुड जॉब बिफोर एंड शी इज स्टिल डूइंग एंड शी वाज वेरी गुड एंड दूसरे उसके जो ब्रदर्स एंड भाभियां बने हैं दे आर ऑल्सो
1: दे आर गुड
0: सलीम खान और ये क्या है Sidra Niazi.
1: Yeah, Sidra.
0: They all are. They all did wonderful job.
2: Dr. Bahu. That's our second जिसमें वो
1: कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ
2: इसमें प्रो ये ऑफ कोर्स जो डॉक्टर बहू की कहानी प्रोफेशनली जो अपना लड़की
1: यस यस बहुत कुछ
2: या गो फॉर इट
1: सो मैं शुरू करती हूँ इसके बारे में सबसे पहले ये कि इसमें डॉक्टर फादर इन लॉ डॉक्टर मदर इन लॉ डॉक्टर बड़ी वाली बहू डॉक्टर जिसके ऊपर बहुत बड़ा जुल्म हुआ जा रहा है कि उसको उसके फील्ड में काम करने के लिए नहीं दे रहा है ससुर और सास भी अगेंस्ट हैं फिर उनकी जो छोटी बहू है वो अब बताएगी आकर बिकॉज शी इज नाउ गॉटन मैरिड जो उनका सबसे छोटा बेटा है जो डॉक्टर नहीं है उस पूरी फैमिली में ही इज द ओनली वन हु इज नॉट अ डॉक्टर और यू नो लाइक मर्दों को इतना ज्यादा डोमिनेटिंग दिखाया है इसमें कि हम जो कहते हैं वो करना चाहिए चाहे तुमने क्या भी किया हुआ हो एंड इसका भी जो मियां है वो भी ही इज नॉट टेकिंग इट इजी के उसकी बीवी तीन चार दिन से उसने मुझे फोन पे बात नहीं करी मेरे से मुझे वक्त नहीं दिया तो यू शुड पुट योरसेल्फ इन द सेम शूज अगर आप डॉक्टर होते और आपकी बीवी दूसरे फील्ड में होती तो वो भी तो शी ऑल्सो गोज थ्रू द सेम थिंग तो दिस इज अ वेरी आजकल के जमाने का जो हो रहा है घरों में इट्स वेरी टिपिकली दे हैव शोन दैट तुम्हारा क्या राय है इस
0: यस ऑफ कोर्स आप मेडिकल करते हैं एंड पूरा इतना स्पेंड करते हैं एंड देन यू डोंट वांट टू प्रैक्टिस क्योंकि आपके इन लॉज नहीं चाहते दे जस्ट वांट टू हैव दैट Okay, she's a doctor.
1: Yeah,
0: and that's all they want.
2: Hmm.
0: But then they want you to do the regular chore घर के जो होते हैं.
1: Yeah.
0: But then अभी जो last हुई थी उसमें मुझे जो लगा था कि जब वो आता है शुजा और आकर वो he was unhappy कि तुम तीन दिन से मैंने नहीं देखा या तुमने फोन नहीं उठाया. And then when she tell him about his own father कि वो क्या कर रहे हैं गलत पहले तो कि नहीं यू शुड ट्रस्ट मी तुम मुझे बताओ लेकिन एंड सिंस बिगिनिंग ऑफ दिस ड्रामा ही वॉज अगेन

0: against his father.
1: Against
0: he his don't father. Like anything what he do, and he know how manipulation, कितना manipulate personality वो है. But then she, then आप खुद कह देते हो, you do all the bad के मेरे father is like this. But when somebody else tell you, you don't like that.
2: So you don't like it.
0: सुनना अच्छा नहीं लगता. So that's what he's doing. He don't like his father. But then जब बहू ने बताया कि that what he's doing. And
3: she didn't like it. And then on top of that, they want her. कि वो घर में पार्टी हो रही है तो उसका पूरा इंतजाम भी वो करे और घर में अपने मियां का भी ख्याल रखे और वो they are expecting too much out of her. Give her a break, let her finish her residency. That's what she wanted. She wanted it always that she wants to finish that. लेकिन जिस तरह का होता है आजकल का सिस्टम कि वो बेटी नहीं है बहू है और दोनों वो बड़ी वाली को तो करने ही नहीं दी उसकी फील्ड में काम बड़ा वाला बेटा भी डॉक्टर है and outside mein he's having an affair with another doctor so you know like it's a typical ke aajkal ke household mein ye kya ho raha hai to ye it's
2: isme jo doctor Sania jo ki apna jo ki jo hai Kubra Khan kari hai aur Kubra Khan ki shaadi ab jo recently hui उसमें जिसके साथ हुई है वो बड़े विलन थे उसमें केस नंबर 9 में पुलिस वाला मुझे वैसे नफरत हो गई उससे
4: लेकिन उसने एक्टिंग बहुत बढ़िया की
2: जबरदस्त तो नफरत हुई ना
3: वो एक्टिंग ऐसे ही टाइप की अच्छी की
2: आई नो बड़ा सुपर डुपर एक्टर
0: है कुछ लोगों का अगर लुक ऐसा हो ना चाहे वो कितने भी अच्छे हों और अगर उसके कैरेक्टर्स तो वो सामने बुरा लगने लग जाता
3: अकॉर्डिंग
0: टू
3: हर हिज वाइफ कोबरा ही इज
0: He is acting really bad.
2: Good stuff. Now we'll move to our next one.
3: Yeah.
2: Sold by favorite, Zanjeere.
4: Zanjeere. Yeah.
2: Yes.
3: क्या कहना चाहेंगे सर?
4: मैं अभी बहुत ही initial stage पे हूँ, लेकिन उसकी story से भी मुझे लग रहा है कि ये भी बहुत कुछ controversial सी होने वाली है, जिस तरह वो एक खई drama था, या मैं मंटो नहीं, और दोनों ही मेरे favorite जो है ना drama, जो तो उसी तरह से मैं उसे देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि ये भी वैसा ही जो है, आप लोग यकीनन उसमें advance होंगे, आप लोग काफी और किस्से देख चुके होंगे, लेकिन अभी जो मैंने दो एपिसोड्स देखी हैं उसमें डायरेक्टर की बहुत ग्रिप लग रही है मुझे स्टोरी के ऊपर जो उन्होंने जैसे उसका स्टार्ट लिया है और यहाँ पे मैं एक और वो हमारी एक्ट्रेस है सीमी नहीं सीमी रहील आई थिंक उनका नाम है क्या नाम है वो जो पीरनी बनी हुई है क्या जबरदस्त एंट्री दी है जी क्या वो जो उन्होंने जो उसका पहला शॉट डायरेक्टर ने पिक्चराइज किया आई डोंट नो दैट वाज एक्सीडेंटल और प्लान्ड कि जब उसके माथे के ऊपर आके एक वो मक्खी जो है ना बैठती है और जो उसकी लुक और वो ना वो उस लड़की को वो जो बताती है कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है या क्या होगा तुम्हारे साथ फ्यूचर में तो बहुत खूबसूरत उन्होंने एक्टिंग की और उसको कैप्चर जिस तरह से कैमरामैन ने किया है उसकी आईज को पीरनी की आईज को और क्या रोब और दबदबा मुझे तो देख के डर आ गया और अभी मैं इस सीन को दोबारा देखूंगा मैंने अभी सिर्फ सेल फोन पे देखा है मैं उसे बड़ी स्क्रीन पे दोबारा जाके देखना एक दफा दोबारा देखना चाहूंगा मैं ऐसी चीजें ज्यादा देखता हूँ स्टोरी और डायरेक्शन और लोकेशन लोकेशन बहुत
2: इसमें लोकेशन बहुत प्यारी
4: बहुत प्यारी लोकेशन है हवेली वो देखी और ग्रीनरी किस तरह से पिक्चराइज की
0: काला बाग है जहाँ पे वो हवेली है
4: ओ अच्छा रियली नहीं मुझे इस चीज का नहीं मालूम

0: बहुत अच्छी लोकेशन उन्होंने उसकी ढूंढी।
1: नहीं आप देखिएगा जो अभी
0: अभी चार ही एपिसोड हुए हैं उसके शायद जी हाँ
1: जल की अब है ना लास्ट दो पिछले वाले दोनों एपिसोड अमेजिंग और बहुत ही अच्छी उसकी जिसने भी डायरेक्शन दी है उसको और जिस तरह उसने उसको पोर्ट्रे किया है ओ बहुत बहुत ही
2: इसमें मुझे जो सबसे अच्छा कैरेक्टर लगा है वो जो भाई है हाँ। जो जिसको बुरा दिखा रहे हैं उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है
1: वो तो अच्छी एक्टिंग
2: करता है तुरखम खान जो बनाया है क्या नाम है उसका उस्मान जावेद
1: हाँ बहुत अच्छी एक्टिंग करता है
2: इतना ही सो पावरफुल के दूसरे भाई वो हालांकि ट्राइब का
1: सरदार
2: है बट एहसन खान इज सच अ गुड बट आई थिंक सब उसके सामने वो हो गए।
0: आपको एक चीज बताऊं अगर कभी मैं ड्रामा बनाऊं और मैं उसमें एक सॉफ्ट कैरेक्टर रखूं और एक नेगेटिव रखूं और मैं आपको स्क्रिप्ट दिखाऊं कि आप इसमें से कौन सा पिक करेंगे आप कहेंगे मुझे नेगेटिव वाला दे दे क्योंकि नेगेटिव रोल में आपके पास बहुत कुछ होता है करने वाला और ये फिर आपकी क्वालिटीज होती हैं कि आप उसे कैसा परफॉर्म करें और हीरोज के पास यूजुअली इतना होता नहीं है बहुत ज्यादा उनके पास मार्जिन नहीं होता तो इसलिए भी शायद जो है और वैसे भी हमारी सोसाइटी में नेगेटिव रोल्स माशाल्लाह आपको अक्सर ही मिल जाते हैं
3: पॉपुलर हो जाते
2: हैं नहीं नहीं
0: जी जी
1: पॉपुलर हो जाते हैं
0: अच्छा मैंने आपसे जब इन्होंने मुझे ड्रामा डेस्क की ऑफर दी तो मैं सोच रहा था कि हम अपने लोकल ड्रामास के बारे में बात करें
3: तो यहाँ लोकल के हम स्पेशल शो करेंगे
0: हाँ तो है होते हैं ना यहाँ पे
2: जब उसमें तुमने नेक्स्ट ड्रामा बनाना
3: है हमने दो महीने पहले तो हमने क्या था ना दोनों पहले मैं गया था मैं तुमने बीना जी ने हम सबने किया था
2: प्रोडक्शन
0: तो मैं तो उसकी तैयारी के साथ आया था उसके बारे में मेरे पास बहुत मटेरियल है लोकल ड्रामा नेगेटिव रोल्स भी हैं
3: अच्छा
0: कॉमेडियंस भी हैं
3: यस ऑफ कोर्स जंजीरे के लिए जो है एहसान खान के एक्टिंग को बहुत सराहा जा रहा है स्पेशल उनका ऑरा
1: एग्जैक्टली द सेम थिंग आई टोल्ड माय हस्बैंड आई सेड ही इज डूइंग अ रियली गुड जॉब ऑफ व्हाट रोल इज बीन गिवन टू हिम भाई जो सरदार
0: एहसान खान
1: से
2: आई थिंक इन दिस ड्रामा अदर थिंग इज वही बात आ जाती है आई थिंक शायद वट एवर रोल्स यू गेट जो भी वो तो करना समिया खान दे हैव बिन कम एज ए हीरो नाउ एज मदर एंड सन मदर एंड सन लेकिन ये कि हाँ सीनरी वाकई
0: आप साइमा मुमताज की बात कर रही
2: हैं
0: बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है
2: शी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस
0: जाहिर है कि किस बाप की बेटी है तो शी इज वंडरफुल आपको पता है ना उनकी बेटी है तलत हुसैन की
2: नहीं नहीं ये नहीं है
0: नहीं यही है
2: ये नहीं है वो जो साहब ये क्या है गुलाम बादशाह में जो भुप्पी बनी है
0: नहीं नहीं नहीं
2: वो है बेटी
0: ये जो है साइमा मुमताज
2: समिया मुमताज नहीं
0: साइमा है या समिया है
1: समिया
2: मुमताज वो है
0: नहीं मैं अच्छा इसे
2: बादशाह में जो पुप्पी है ना वो है बेटी तलत हुसैन की
0: मुझे लगा कि ये है उनकी बेटी अच्छा मे बी आई एम रॉन्ग
2: ये नहीं
1: आप दूसरे ड्रामा किस बारे में बात कर रहे
3: हैं बस तेरा साथ हो
1: वो अभी
3: जो कि अभी शुरू हुआ है
1: अभी शुरू हुआ है इट इज वेरी सैड टू सी इट बिकॉज देखिये उसमें दो तीन चीजें बताई हैं जो मैं आई एम गेटिंग इट एट फर्स्ट के एक यतीम बच्चा जो चचा के ताया के हाथ में आता है वो बचपन से नेगेटिविटी हमेशा सॉरी बोलता रहता है अपने दूसरे कजन को और उसकी बहन तो बहुत ही ज्यादा चलाक दिखाई है और फिर एक और पहलू दिखाया है कि जब आप इतने ओल्ड हो जाते हैं उनके दादा उनके साथ रहते हैं तो उनको किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है तो वो एक पहलू दिखाया है फिर उसकी लड़के की क्लास फेलो है जिसकी भी कहानी बिल्कुल इसी तरीके से है कि उसका जो भाई है और भाभी जो है उसको बहुत अच्छी तरह ट्रीट नहीं करते और बाप जब मर रहा था उसको पता था कि वो बेआसरा ना हो जाए उसने दोनों का विल में बराबर का हिस्सा दिया ताकि उस लड़की की एजुकेशन कंप्लीट हो क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट लड़की है वो बहुत पढ़ना चाहती है अपने लिए उसके बहुत बड़े बड़े ख्वाब हैं तो उस बाप को पता था इसके बारे में अब वो भाई से बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि शरीयत में तो यह है नहीं कि लड़की का बराबर

0: ऐसा है, लेकिन जब बाप ने विल में लिख दिया, लिख दिया,
1: यू कैन डू दैट,
0: यू कैन डू दैट, बिकॉज बाप को
1: यू डोंट हैव टू वेट के मरने के बाद,
0: और उसको मालूम था उस बाप को कि ये भाई इसको नहीं देगा, इसको नहीं अच्छी, और भाभी बहुत गुस्से में उनको अच्छी तरह ट्रीट नहीं कर रही है उस लड़की को, ये लड़की शी इज वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ हरसेल्फ, सो वो दिखाएगी अपनी भाभी को जो जिस तरह से बोलती है. तो ये तीन पहलू दिखाए, एक बूढ़े बूढ़े माँ बाप की हकूक, दूसरा भाई बहन का हकूक, उनके उसकी कफालत, ही शुड डू इट बिकॉज शी इज अलोन इन दिस वर्ल्ड, और तीसरा वो जिस तरह से उस बच्चे को ट्रीट किया. तो ये कहानी थोड़ी सी सैड है, लेकिन एक्टिंग सबकी अपनी जगह पे बहुत अच्छी है. तो अब ये लड़की आई थिंक विल बी टुगेदर विद दिस बॉय, अनस एंड अंसा नाम है, अनस एंड अंसा. तो it's going to do
1: something,
0: it will do good to both of them. So it's just started, so it's the story is developing, but you can see ke ye teen kaun se pehlu dikhana cha rahe hain.
2: Ji ji, Ansa ji,
1: मुझे इसमें एक और जो पहलू नजर आता है जो मुझे बड़ा अच्छा लगा, कि अनस भी अपने ताया के घर में रह रहा है और वो लोग उसको बहुत डिग्रेड कर रहे हैं, बहुत बुरा ट्रीट कर रहे हैं, और सना जावेद भी अपने भाई के घर में रह रही है जहाँ पे उसको भाई और भाभी उसको वो कर रहे हैं, लेकिन शी इज टेकिंग अ स्टैंड एंड ही इज नॉट. सो ये कि अगर आप स्टैंड लेते हो देन यू कैन फाइंड द वे एंड डू, नथिंग इज ईजी, यू हैव टू टेक अ स्टैंड इन योर लाइफ एंड यू हैव टू मूव ऑन. तो उसमें वो मुझे अच्छा लगा कि यस यू हैव टू बी अ स्ट्रॉन्ग,
0: एंड आई एम हैप्पी द गर्ल इज टेकिंग अ स्टैंड,
1: राइट, एंड ही इज. एंड दूसरी एक चीज जो मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी, दे बोथ आर लिटिल टू मैच्योर फॉर एज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट.
0: अच्छा ये भी तो है ना आजकल, ये सीनियर के लोग पढ़ाई कर रहे हैं,
1: नहीं वो सही है, बट एज ए स्टूडेंट आप दिखा रहे हो, या तो थोड़ा सा दिखा देते कि ओके उसके मिस हुए इतने साल बिकॉज ऑफ द ताया एंड ऑल दैट, उनकी मिस यूज जो वो करते हैं, तो वो तो फिर थोड़ा सा जस्टिफाई हो जाता. तो थोड़ा बहुत
0: आप देखिएगा फिर नेक्स्ट टाइम हम आपसे,
3: बिल्कुल बिल्कुल, आपकी कुछ थोड़ी बातों से अंदाजा हो रहा है कि बहुत अच्छे ड्रामे हैं ये सब,
1: बहुत अच्छे.
3: मैंने अभी तक इत्तेफाक से इनको स्टार्ट नहीं किया, लेकिन
1: एंड आई होप कि हमारे लोगों में इसकी अवेयरनेस आए इसके बाद, कि जैसे कि यू डोंट हैव टू वेट फॉर कि सब डेथ होती है और फिर आप बशरिया बेटियों को ना दो. हाँ, यू कैन, आपको नजर आ रहा है, एंड ये आई थिंक ह्यूमन नेचर है कि फिर लेना सबको अच्छा लगता है लेकिन फिर करना सबको बहुत मुश्किल लगता है. तो दे शुड अपनी बेटियों के भी राइट्स को देखें और उनके लिए पहले से ही प्लान करें.
4: ये जो सना जावेद का, इज दिस हर फर्स्ट ड्रामा सिंस वेडिंग?
1: नहीं
4: शादी के बाद, इसलिए वो तो काफी नेगेटिविटी में थी आफ्टर द वेडिंग,
1: उसके प्रोग्राम में फहद मुस्तफा के प्रोग्राम
4: में काफी आ रही थी,
1: आ रही थी, बट ड्रामे में नहीं
0: देखा, काफी अरसे बाद आई है, इसीलिए मेरा भी दिल किया देखने का इसका.
4: और जो लोग जो इनको जो काफी पसंद करें, इनकी एक्टिंग को,
3: काफी देर से सना जावेद का कोई ड्रामा नहीं आया. अच्छा, ये इस ड्रामे में है,
4: लेकिन इसमें जो यतीम बच्चे का जो था अपना जो जो इसमें जो इमोशन वगैरह है, आई थिंक इट्स जो है रिलेट टू जो हमारी आजकल की जो है फैमिली में चल रहा है, या तो जो आजकल जो माशरे में चल रहा है, सो कनेक्टेड टू जो है रियल स्टोरीज.
1: आई थिंक हाँ, आजकल क्या, इट्स ऑलवेज लाइक दैट, एवरीबॉडी इज फॉर देयर ओन किड्स आर ऑलवेज प्रिविलेज एंड नंबर वन, नोबडी कैन बीट देम. सो अगर कोई उनके कॉम्पिटिशन में आता है तो नोबडी लाइक दैट.
4: दूसरे हैं सुल्तान बैंक्वेट हॉल, जहाँ पर हमारा इवेंट भी होने जा रहा है, जो गुलाम रसूल साहब जो की फाद रेस्टोरेंट वाला है, ही इज द सेम ओनर, 4032806677. सोनी मिर्जा मेकअप आर्टिस्ट, अवर गुड फ्रेंड, शी इज एन अमेजिंग. अगर कोई इवेंट आ रहा हो या तो फिर जैसे आजकल जो है ग्रेजुएशन का जमाना है, इफ यू

0: फाइंड आउट कि इसका ये भी नेगेटिव है
1: लेकिन
0: पहले वो शादी के लिए तैयार नहीं
1: ही नो नो नो दैट वाज नॉट द टाइम दैट शादी के लिए तैयार नहीं था शी इज एट दैट पॉइंट ही नेवर थॉट लाइक दैट अब क्या है अब when you see the last episode now his mind is going towards side ki ye to meri bahu ka bhi hai now he's going to ye it's unethical ke live
0: person it's very unethical
1: not a live person ko to aap maar ke
0: heart nahi donate kar sakte
1: the way that's why I'm waiting to see what are they going to do ke how it, this is going to
0: I think place. He planned that but yes he didn't do it abhi tak usko इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है और उसको यस ही इज डाइंग और ये वो बट आई डोंट नो कि कोई जिंदा इंसान अपना हार्ट डोनेट करके अपने आप को मार दे दैट्स काइंड ऑफ मुझे समझ नहीं आ रही ये बात
1: इफ इफ अ पर्सन वांट्स टू डू दैट देन नोबडी कैन इफ दे राइट इट एंड दे
0: नहीं वो तो डोनेशन में साइन कर दिया है और
1: समहाउ तो ऑलरेडी कर दिया था
0: किसी भी तरह से अगर उसकी डेथ होती है तो उसका हार्ट ऑफकोर्स चला जाएगा बट देन
1: We have to see that now. How
0: it's a mama.
2: अच्छा ये बताइए कि अगर कोई आपके व्यूअर्स ने कोई स्टार्ट करना हो ड्रामा देखने हो तो कौन से पहले तीन ड्रामे कौन से जो आप रिकमेंड करेंगे इस वीक में
1: वेरी गुड क्वेश्चन
2: इस वीक में
1: इस ये जो अभी है मैं कहूंगी हमराही जंजीरे और ये अपना डॉक्टर भाव
3: जैसे लास्ट वीक जो कफील बहुत अच्छा जा रहा था
0: वो ये भी होता है ना कि व्हाट काइंड ऑफ आपको ज्यादा क्या पसंद है यू वांट लिटिल बिट
1: लाइट
0: लाइट एंड कॉमेडी और लिटिल बिट रोमांटिक और
2: तो अगर व्यूज देखे जाए तो व्यूज तो सबसे ज्यादा उसके हैं ये जो ड्रामा दूसरा चल रहा है शदाई
3: का
2: उसके सबसे ज्यादा व्यूज हैं 24,000
1: वो थोड़ा सा उसमें थोड़ा ह्यूमर भी है थोड़ा हंसी मजाक भी है
0: कह रही थी
1: दैट्स व्हाट आई
3: एम सो वी आर कमिंग टू दैट वी आर श्योर राइट नाउ लेकिन जो है मेरे पास जो ट्रेलर है फॉर हमराही सो लेट्स एंजॉय
4: डेट है हमारी यू नीड टू लुक स्पेशल
5: लेकिन आज सीन तुमने लगना है क्या पता हमारी आखिरी डेट
4: सेहान अगर जरा सा भी फ्लू हो गया तो
6: यार क्या बार बार याद दिलाना जरूरी है कि बीमार हूँ मरने वाला
7: कैसे बन जाओ यार हमारी कहानी खत्म
4: आज डेट है हमारी यू नीड
1: एकदम से उसको अपनी बीमारी याद आ जाती है और थोड़ी देर के लिए वो खुश होता है लेकिन एकदम से उसको होता है मैं मरने वाला हूँ एंड इट्स फॉर एक आदमी जिसने इतनी मुश्किल से अपनी मोहब्बत हासिल की उससे शादी की एंड देन ही फाइंड्स आउट दैट ही इज गोइंग टू डाई इफ ही डजंट गेट द हार्ट सो इट्स वेरी वेरी हार्ट ब्रेकिंग सो उसके जो इमोशंस दिखाए ना आप भी देखिएगा बताइएगा आपको कैसा लग रहा है लेकिन अमेजिंगली डन acting.
0: Very good. Yes, acting is very good.
1: Very good.
0: Hiba Bukhari is very good.
3: Oh, she looks amazing.
0: Right. And I think uska shayad double role hai. Ab Istanbul mein dikhayenge uski sister. We were talking about.
3: Yeah. Okay, so next is Sherzai, Firoz Khan and Seher Hashmi.
1: Answer. Bolo.
0: I like that drama. It's very light. Right now. Let's see. अभी आई उसमें नवेल का रोल भी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है एंड शी इज लुकिंग वेरी गुड पहले मैंने बहुत ड्रामों में उसको देखा है मुझे इतनी शी इज वेरी प्रिटी बट अपने आप को मेंटेन करने से भी बहुत फर्क पड़ता है
1: इसमें बहुत अच्छी
0: तो इसमें बहुत अच्छी आई है एंड देन दैट गर्ल सहर हाशमी
1: शी इज बहुत अच्छी
0: सो क्यूट बहुत इनोसेंट
2: शी
0: इज न्यू
2: क्योंकि अभी रिसेंटली जो दो ड्रामे मैंने फॉलो करने शुरू किए हैं उन दोनों में और मैं इससे पहले इनको नहीं जानता था
0: नहीं, she's new. लेकिन एक दो में आई है एक दो में आई है बट यस शी इज न्यू एंड शी इज वेरी यंग इसमें भी बस ये है कि ऑफ कोर्स हर ड्रामे में कुछ प्लस एंड माइनस पॉइंट होते हैं
1: वो तो होते हैं
0: एंड अभी ये स्टार्ट
1: स्टोरी लाइन अच्छी है इसकी डिफरेंट है थोड़ी
0: इट्स अ बिगिनिंग तो जब कहानी डेवलप होती है मीनवाइल then you will find out aap uske sath zyada attach hote hain otherwise in the beginning thoda sa aap you are putting few scenes are very good. उसमें जो वो बस में travel करती है और वो भी पीछे बैठ जाता है and then he don't have a money.
1: उसको पता नहीं है कि कितना rich आदमी है.
0: And then she give him a 500 and कहती है ओके पैसे रख लो.
1: क्या पैसे?

0: chip ni pasal
1: bawa tu cek bawa tu cek benaya macam scene
0: scene
1: bawa tu cek kia macam and then last time rain बड़ी अच्छी दिखाई
0: बड़ी अच्छी दिखाई
2: रेन वाला सीन मैंने भी देखा बहुत खूबसूरती से जो ना पिक्चराइज किया गया है
1: फोटोग्राफी इज वेरी गुड एंड लोकेशन इज गुड
0: या और वो ड्राइवर
1: ड्राइवर
0: सो क्यूट इतना इज इन लव विद हिज बॉस एंड इतना खुश होता है जब उसका बॉस उसको कुछ भी वो कहता है और मैं यू नो लाइक ही गेट्स क्योंकि वो उसका लाइक ही इज अ हीरो फॉर हिम
1: Right.
0: His boss is a hero.
1: Right.
0: But the way he is so cutely
1: and
0: acting.
1: And then the Chowkidar Baba.
0: I'm in love with him. Actually, I'm in love with him. Like he is
1: Selma?
0: The...
1: ये नहीं कह सकते
0: क्यों नहीं कह सकते क्यों आप किसी को अच्छे तरीके से लव नहीं कर सकते
1: बुरे तरीके से कर सकते
0: नहीं बुरे तरीके से हम नहीं करते हम हमेशा अच्छे तरीके से करते He reminds me actually छोटी सी बात बताऊंगी He reminds me of this driver जब मैं अपने ससुराल जाती हूँ ना तो उनका ड्राइवर है अब्दुल कयूम ओके अब्दुल कयूम की शक्ल उसके मैनरिज्म्स उसकी द वे ही इज लाइक हिम मैं तो उसके साथ आई जस्ट ब्यूटीफुल मैन इनसाइड आउट मैं तो उसकी शैदाई थी शैदाई थी
1: शैदाई थी
0: जब मेरी बेटी गई लास्ट टाइम पाकिस्तान एंड ही सॉ अब्दुल कयूम वो मैं सच्ची बता रही हूँ शी सेड द बेस्ट ओल्ड मैन आई एवर सीन इन माई लाइफ उसके लिए फ्रिज उनके फ्रिज में से निकाल निकाल के चुपके से जाके उनको चॉकलेट देती थी हाँ इस तरह से शी वाज और कह रही थी अभी आप जा रही हैं मैं वापस से तुम मुझसे कहने लगी आप उसकी तस्वीर निकाल के प्लीज लेकर आइएगा So this is what I'm saying that he reminds me so much of Abdul
1: Kayum. Okay, okay, तुमने justify कर
0: दिया. That's good. इसलिए कि मैं नहीं मेरी बेटी भी.
2: अच्छा शहदे का trailer है मेरे पास लग सुना है मेरे पे बैक.

0: Yeah, it's actually video. I thought it's going to be jo hai usme dialogues honge, isme dialogues nahi hai, khali video hai. Lekin ye jo hero hai na, mujhe pata nahi kyun apna hero aisa nahi lagta. It looks like a villain to me.
1: पता
0: नहीं क्यों मे बी
1: गोरा
2: चिट्टा
1: नहीं है आई थिंक ऐसा नहीं है ना
2: जैसा दानिश है
1: जैसा वो क्या है
2: बहुत ज्यादा गोरा चिट्टा
1: हाँ
2: दानिश तैमूर बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा
1: बट एक्चुअली थोड़ी उसकी पर्सनैलिटी भी ऐसी है कि हीरो से ज्यादा उसके ऊपर
2: विलन का रोल अच्छा है इसके फिरोज खान का
1: का ख्याल आता है क्योंकि एक ड्रामे में पिछला जो था जिसमें आयजा खान था उसमें विलन ही बना था
0: हमने ब्रेक भी नहीं लिया
3: आप बताइए आपका आपका कौन सा फेवरेट है
2: ड्राइवर से हम रहे हम रहे देख रहे हो तो गुड
0: अच्छा लेकिन वो जब से सभा कमर गई थोड़ा शांत हो गया उन्हें दो बैक टू बैक मैंने देखे उसके ड्राइवर बन रहे लेकिन यू नो यू नो जस्ट वांट टू सी द जो है मायरा खान Hopefully she can come to drama. Yeah, back to drama.
1: Once in a while,
3: she's busy in the movies mostly.
2: Yeah, she's
0: busy in the movies. Yeah, she'll be back.
1: फिर भी आ जाती है once in a while.
2: कभी कभी आ जाती है.
1: अभी एक दो और बड़े अच्छे शुरू होने वाले हैं ड्रामे.
2: ड्रामे हाँ.
1: है ना?
2: Yeah.
1: एक और मायाली और उसका
0: You know, just in general, you know, from this episode, ऐसा लगता है कि जैसे they are जो है shooting on a beautiful locations.
2: Yeah.
0: अमेजिंग लोकेशन इनकी एक्टिंग तो है ही अच्छी इनकी ड्रेसिंग माशाल्लाह क्या बात है एक से बढ़कर एक मेल हो फीमेल हो कुछ भी हो ड्रेसिंग ऐसा लगता है कि यस यू आर वाचिंग समथिंग
1: एंड सबसे अच्छी बात ड्रामास में मुझे ये लगती है कि जब अगर सिंपल रोल दिखा रहे हैं तो दे आर नॉट टू ड्रेस्ड अप दे आर नॉट पूरा ऊपर से नीचे तक वो नहीं होते
0: सिंपल
2: क्लास के तो उस तरह की
0: राइट
1: तो
0: रोल
1: राइट दैट इज द नाइस थिंग अदरवाइज मूवीज और या
2: इसमें नहीं दिखाते इस तरीके से हाँ नहीं नहीं बहुत

0: appropriate.
1: एक चीज मुझे बॉदर करती है कभी-कभी कि अच्छे मेरा ख्याल है सभी सोते हुए चेंज करते हैं नाइट सूट पहनते हैं
2: इसमें
1: उसी कपड़ों में सो जाते हैं
2: नहीं इसमें दिखा रहे हैं जो मैं रागुजर देख रही हूं शी इज ऑलवेज इन हर नाइट सूट या सो या देयर आर सम मिस्टेक्स दे होपफुली दे एंड यू नो मेडिकल फील्ड वाले ड्रामे दे गॉटन सो मच बेटर और नॉट
1: ऑफ कोर्स
2: मैं और ताज देखते थे
1: गूगल से आप
2: ओह माय गॉड व्हाट ब्लंडर्स दे आर मेकिंग
3: मुझे मालूम है आपके शो का टाइम खत्म होने वाला है एक चीज का मैं आप से कहूंगा कि आप एक और जो टीम में एक और जो मेंबर होता है उसको भी क्रेडिट दिया करें वो आपका ड्रामा एडिटर या फिल्म एडिटर होता है जो कि आप ना उसका नाम जानते हैं क्योंकि मैं एडिटिंग करता हूं किसी भी चीज को खराब करना हो तो एक बुरे एडिटर को हायर कर सकते हैं आप को जो चीज इंप्रेस कर रहे हैं जो आप उसमें कलर ग्रेडिंग देख रहे हैं मूड के जो सीन का मूड बनता है कलर्स को देख के जिस एंगल से दिखाया जाता है उसको और जो साउंड्स वो डालता है जो के जाके आपके दिमाग को अफेक्ट करते हैं ये एडिटर है ये एडिटर और डायरेक्टर है डायरेक्टर साथ होता है एडिटर और असल में फिल्म बनाता ही डायरेक्टर और एडिटर है आप इन्हीं सीन्स को विदाउट साउंड इफेक्ट्स के देखें विदाउट कलर ग्रेडिंग देखें आप कहेंगे कि यार ये तो आर्टिस्ट किसी काम का नहीं है
4: बिल्कुल बिल्कुल Thank you so much, guys. Thank you. Jo apne Salman ji and Zaid ji as well. Bye. Thank you so much. We'll do the next episode of the KWJ Drama Dex next month sometime, probably third week or fourth week in June. So until then, Khuda Hafiz, Tasleem Azad, Benny Ali Madad. We'll meet jab bhi hamara Matias ko show ka. Inshallah, we'll see you there. And it's going to be awesome show with Alex and Moa. Thank you so much, everyone, for watching and listening today's show on Radio Sasangam 94.7 FM.
5: The time is 9 p.m.
6: You are listening to Fairchild Radio, CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.
7: Whenever you want it, wherever you are, at the palm of your hands. Listen to FM 94.7 anywhere with the Fairchild Radio app. Available now for free on your device's player or app store. Connecting you to the community. Anytime, anywhere.
8: ਸਹੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਹਕਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਾਰਕਾਂ ਤੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੇੜਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਘਰ ਵਰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹਕਸਲੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਥਿਤ ਹੈ genesisland.com ਤੇ ਜਾਓ
9: ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰੇਡੀਓ ਸੁਰਸੰਗਮ 94.7 FM ਤੇ ਸੁਣੋ ਹਫਤੇ ਦੇ 20 ਘੰਟੇ ਰੇਡੀਓ ਸੁਰਸੰਗਮ radiosursangam.ca ਫੋਨ 403-585-0910 ਰੇਡੀਓ ਸੁਰਸੰਗਮ
10: ਕੈਲਗਰੀਜ਼ ਓਲਡੈਸਟ ਬਿਗੇਸਟ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਬਰੰਗ ਰੇਡੀਓ 94.7 FM
11: ਮੰਡੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਥਰਸਡੇ ਫਰਾਈਡੇ 7 ਟੂ 8 PM ਸੰਡੇਜ਼ 1 ਟੂ 5 PM
10: ਵਿਜ਼ਿਟ sabrang.ca
6: The following program speaks to the South Asian community. Uniting the world for your listening pleasure at Fairchild Radio, the multicultural spirit of Calgary, CHKF 94.7 FM.

0: होम केयर सर्विसेज दी एंड मैं पैरामेडिका बाय प्रोफेशन एट वाईवाईसी होम केयर सर्विसेज असी घरां दे विच होम केयर प्रोवाइड करदे आं जिदे विच असी सरकार नूं सिद्धा बिल करदे आं अंडर क्लाइंट डायरेक्टर होम केयर इनवाईसी प्रोग्राम इहदे लई गवर्नमेंट फंडिंग हैगी आ उहदे लई तुहानूं कोई भी क्वेश्चन होण तुसीं सानूं फोन कर सकदे आं 8257600983 ते थैंक यू
1: मर्सिडीज कार खरीदना चाहते हो हुण कनेडा दे विच तुहाडे सुपने सच होण दा समा आ गया कनेडा दे विच मर्सिडीज दी सब तो वड्डी डीलरशिप कैलगरी एयरपोर्ट दे नेड़े मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल पहुंचो ते सिद्धी गलबात करो गौरव शर्मा दे नाल पंजाबी हिंदी उर्दू या फिर अंग्रेजी दे विच गलबात करो गौरव शर्मा तुहानू देणगे वधिया सलाह ते वधिया डील्स मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल्स 70 दे करीब कारां दी डिस्प्ले वाला वड्डा शोरूम सब दा माण सब दी चाहत अपनी सुपनमई कार खरीदण लई गौरव शर्मा नूं शोरूम च जाके मिलो या फिर फोन कर लो 403-903-6757 मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल्स नॉर्थ ईस्ट कैलगरी दे कैसल रिज एरिया दे विच है लॉट खरीदण दा शानदार मौका जिथे बनाए जा सकदे ने 3 टाउन हाउस एना ही नहीं एना तिना दे नाल लीगल बेसमेंट सुइट भी बनाई जा सकती ने बिल्डर्स ते इन्वेस्टर्स लई है शानदार मौका फ्यूचर रेंटल इनकम लई है ए एक बहुत वधिया ऑप्शन वधेरे जानकारी लई कॉल कर सकदे हो एमे नू 403-617-2111 ते अमन गिल नू भी कॉल कर सकदे हो 403-479-7007 ते बिल्डिंग परमिट पहला तो ही अप्रूव्ड है
2: कनाडा विच रहंदिया इंश्योरेंस दी बहुत अहमियत है किसी भी तरह दी इंश्योरेंस लई पंजाब इंश्योरेंस दे रीजनल मैनेजर हरपिंदर सिद्धू नाल आज ही संपर्क करो सुपर वीजा लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस आरईएसपी दियां वधिया सेवावां लई पिछले लंबे अरसे तो कैलगरी विच जानिया पहचानिया नाम है हरपिंदर सिद्धू ए इंश्योरेंस लई नामवर कंपनियां नाल काम करदे हन होर जानकारी लई पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिद्धू नाल 403-404-3500 ते संपर्क करो
3: सोने घर दी निशानी हुंदी है शानदार फ्लोरिंग जिथे कदम रखदिया ही तुहाडे मेहमान फ्लोरिंग कंपनी दा पता पुछन लग जान ते ओ पता है कैलगरी कारपेट एम्पायर जिथे तुसी ले सकदे हो अपनी पसंदी फ्लोरिंग दा समान फ्लोरिंग घर दा होवे या होवे कमर्शियल नवा लवाना होवे या होवे रेनोवेशन दा प्लान कारपेट हार्डवुड लेमिनेट टाइल ते होर शानदार फ्लोरिंग दे डिजाइनां नाल भरिया है इना दा शोरूम अज ही इना दे शोरूम ते पुछो 2935 19th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी कैलगरी कारपेट Empire. Phone number 403-510-1515 2935 19th Street, Northeast Calgary.
4: हाई क्वालिटी वालियां फोटो चाहिदियां ने तां फिर पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा कर लो किसी भी उम्र दियां दो पासपोर्ट फोटो सिर्फ $7 विच तुहाडे कारोबार जां सोशल मीडिया प्रोफाइल लई प्रोफेशनल हेडशॉट सुंदर फैमिली फोटो जो सदा लई यादगार बन जावे साडे तजुर्बेकार फोटोग्राफर लेटेस्ट इक्विपमेंट वरतदे हन तां जो तुहाडियां फोटोआं बिल्कुल परफेक्ट आउण ए सब कुछ बिल्कुल वाजिब प्राइस ते पासपोर्ट तो लेके हेडशॉट अते परिवार पोर्ट्रेट तक असी सब कुछ करते हां पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा करो तुहाडी फोटोग्राफी दी हर लोड लई कॉल करो 403-947-0060 403-947-0060 जां आओ यूनिट 530-669 सवाना बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी पिक्सल फोटो स्टूडियो जिंदगी दे पलां नूं कैद करदे होए एक फोटो एक वार
5: ग्रोसरी खरीदने लई हमेशा याद रखो कैलगरी दा मशहूर सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर
6: ताजियां सब्जियां फल फ्रूट दालां मसाले ते बर्तनां तो इलावा घरां दी वरतों दा हर समान मिलेगा कीमतां कट ते क्वालिटी A1
5: जानिया पछानिया नाम है सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर
6: तुहाडी ग्रोसरी दियां लोड़ां पूरियां करन लई सांझा पंजाब दियां कैलगरी दे विच हन 6 लोकेशनां हफ्ते दे 7 दिन सवेरे 9 बजे तो लैके शाम 9 बजे तक
5: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर पहली लोकेशन 331-3690 वेस्ट विंड ड्राइव
6: दूजी लोकेशन 117-7780 एवेन्यू
5: तीजी लोकेशन 570-6520 फाल्कन रिज बुलेवार्ड
6: चौथी लोकेशन 606 सिटी स्केप स्क्योर
5: पांचवी लोकेशन 3150-235 रेड एम्बर्स वे
6: छेवी लोकेशन 400-45 करिंग

रेडियो सुरसंगम 94.7 एफएम सुन रहे सारे श्रोतियों नूं कुलदीप सिंह वल्लों सत श्री अकाल जी। अज दिन वीरवार मई महीने की 21 तारीख सन 2026 शाम के 4:15 बज रहे हैं। हुण तो लैके 6 बजे तक मेरा ते आप जी का साथ रहेगा। अज दे इस प्रोग्राम विच असी बहुत सारिया खबरां ते चर्चा करनी है। इस तों अलावा प्रोग्राम के दूसरे हिस्से विच एक गलबात भी पेश करांगे। यह साढ़े अज के बाकी रहिंदे प्रोग्राम ते उन्हां दा वेरवा 8 बजे एक विशेष प्रोग्राम आप जी लई पेश करांगे, जिस विच पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला दे साबका वाइस चांसलर साबका आईएएस अफसर सवर्ण सिंह गोपा राय दे नाल एक गलबात जिहड़ी है वह पेश की जाएगी। ये खास गलबात असी अज पेश करांगे अज के 8 to 9 बजे वाले प्रोग्राम विच। 9 बजे पंजाब तो जतेंद्र पन्नू जी नाल असी गलबात करांगे जी। अज के प्रोग्राम विच सवाल जवाब भी होगा, सवाल जवाब होणगे, मतलब सवाल असी करांगे ते जवाब स्रोते देणगे। प्रोग्राम के शुरू विच कुछ व्यापारक संदेश आप जी नूं ज़्यादा सुनने पए ने, माफ़ी चाहते इस वास्ते। प्रोग्राम बिल्कुल असी खबरां नाल लैस प्रोग्राम जिहड़ा है आपके लिए पेश करांगे, लेकिन सब तो पहला थोड़ी जी मौसम की गल कर लीए जी। इस वक्त कैलगरी 16 डिग्री सैलसीयस है। आने वाले दिनों दे विच ते अज रात नूं +4 डिग्री सैलसीयस टैंपरेचर होगा। कल 20 डिग्री, उस तो अगले दिन 24 डिग्री, फिर 19 डिग्री, फिर 24 डिग्री, इस तरह का टैंपरेचर रहने की संभावना है जी। ये कैलगरी शहर का मौसम का हाल, कोई बारिश जोरदार की कोई संभावना नहीं है, अजिहा कोई अनुमान नहीं है। अज के प्रोग्राम विच जिहड़ियां खबरां ते असी चर्चा करनी है, मार्केट के हालातों तो बाद अल्बर्टा सरकार ने अपने मंत्रिमंडल दे विच फेरबदल कुछ किया है, ये बारे गलबात करांगे। कनेडा विच इंटरनेशनल स्टूडेंट ते टेंपरेरी वर्कर आने बहुत ज़्यादा घट गए ने। 2026 के अंकड़े पहले 3 महीनों के आ गए ने जी, वह सांझे करांगे। सीआरए वालों पब्लिक जिहड़े मुलाजम ने जी उन्हां नू एक हफ्ते 4 दिन ऑफिस तो कम करने लई कह दिता गया। कैनेडा स्ट्रोंग पास जिस दे जरिए तुसी पार्क दे विच विजिट कर सकते हो अगले महीने तो, ते कुछ वाया रेल ते म्यूजियम जाने लई ते नैशनल पार्क जाने लई कोई जो डिस्काउंट वगैरह दिते जांदे सी वह फिर दिते जाणगे जी। इस साल भी कैनेडा स्ट्रोंग पास ते होया, लेकिन यूएसए नू विजिट जिहड़े ने जी उन्हां दा घटना जारी है, उहदे बारे भी असीं जानकारी आप जी नाल सांझी करांगे प्रोग्राम विच अगे चल के, ते सवाल भी इसे नाल संबंधित होवेगा। यूएसए दीआं वोटां विच कई बारी वोट पाउण वाला कनेडियन सिटीजन जिहड़ा है उसनूं चार्ज कीता गया गैर कानूनी तरीके नाल वोटां पाउंदा रहा। ब्रिटिश कोलंबिया दे एक व्यक्ति नूं गिरफ्तार कीता गया ते उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उसने सैकड़े औरतां दीआं बड़े लंबे समय तो वीडियो बनाईआं ते फोटो खिंचीआं बिना उन्हां दी मर्जी तो। पीयर पोलियाव कंजरवेटिव पार्टी दे आगू जो कि फैडरल पार्टी दे आगू ने कहिंदे ने कि अल्बर्टा नूं कनेडियन परिवार विच रखण लई ਉਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਲਬਰਟਾ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। रेडियो सुरसंगम 94.7 एफएम ते हफ्ते दे 20 घंटे प्रोग्राम